0: प्रोग्राम मंजूर स्वान सर के ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सेंटर सवा भी खजरमंद और जिनको चाह तहम द हडुक मसलवी द कोपो मसलवी द जुड़ू द पटो द महरू मसलवी बागोई राशि द डॉक्टर तारिक रहीम से अपना अखबल इलाज के इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक पर चकम देगा शिफाए कामिला अता सुलारा के सही है। डॉक्टर तारिक रहीम से ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सेंटर सवावे की मौजूद हुई कम चिपा सवाबी जहांगीरा रोड कुंडा मोड़ के अलसेट सेंजिटा महामा बिलाल प्लाजा की दगा क्लिनिक मौजूद है। तासुराशी अखबल इलाज चकम डे डॉक्टर तारिक रहीम से अपनों के गुरु चुपलानी सूख दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: रेडियो ना साइट टशे रेडियो ना आओ जी आओ रेडियो ने लग साइट टशे चे रेडियो आवाज मुंग तंदर आजी हाँ हेलो
1: मैं रेडियो आओ देखा
0: आओ जी आओ रेडियो जब बिल्कुल सड़ी मशी पखेर आगली है तेम सो का उड़ी चरता ना
1: जो मैंने मामा खबर को मैं यार जो खुफो के दासी मीगी मीगी वों तक राशी पसाना
0: हाँ लासुन अखपे उम मीगी मीगी कीगी
1: मैं लासुन
0: रूर रूर स्तासु खबर बांधे जब वो शुमार लग लगा खुस्तासु आवाज की डीड जात शुर दासु रेडियो रेसे जवाब दर कोमा हाँ ओके जी डेर डेर जाते शुक्रिया। दस डे का दरमन दूर दिन को चिदचा लासुन अखपी या चकम दे नो पंडाई वर्षरा या चकम दे दा कोपी वर्षर चकम दे मीगी मीगी कीगी भी हरकत कीगी उड़ कीगी नो ददी इलाज चकम दे बिल्कुल मुंगसर क्लिनिक किश्ते दे जी डॉक्टर तारिक रहीम से पजीर निगराने के बाद दी इलाज कीगी तासु राशे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ब्या बस तासु पंडाई के भी कलासुन भी कखपी भी ब्या मीगी मीगी निकीगी जब बिल्कुल सही हुई हाँ यौजल राशे और डॉक्टर तारिक रहीम से अपना अखपल इलाज ओके।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मदहम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राबता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान।
3: मदरसा दारुल कुरान व सुन्ना लिल बनैन वल बनात, मोहल्ला तौहीदाबाद, गांव स्पिनकाणी, नजदीक जामे मस्जिद तौहीद।
4: जमुन को मदरसा के सहर दशपगु बजो नवाखला तर गर्मी दुल सुबह जो पूरे जनानो तालीम और हम दगशान ददरु बजो नवाखला तर माखा पूरे नारिनो तालीम खुद लिशी चिपाही की कायदा तर्जुमे कुरान, नाजरे कुरान, हिफ्ज़ुल कुरान और दर्जी उलाना दौरे हदीस पूरी किताबुना खुद लिशी। ज़ेर निगरानी मोहतम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सेब और नाजिम साबिर हनफी सेब। कॉन्टेक्ट नंबर तौसीफ अहमद खाकसार 0315-6386-080। मुफ्ती मोहम्मद नाहिद सेब कॉन्टेक्ट नंबर 0314-06-93-596। नुहुम उस राशे पुल औलाद ना दा दुनिया हम खेस तकड़े और आखिरते हम खेस तकड़े मुंसरा दाखिली शुरू दी।

0: right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: खुश खबरी, हागा ठोल बीमारान चजचा हड़ुकी माछी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी के दचा दखपो औ दलासुनु गुतु रगुन बन शिवी औ या गुते बेहरकत शिवी औ दचाचे दखपो द कुंडो दनन लाड़ खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगटोली जनाना चरचा खपे औ लासुना सुनकीगी औ हगटोल मरीजान कमचे दमला दमहरो या द पटो मरीजान हुई या दमाशुमानो खपी कगी हुई नु दहागे टोलो मरीजानो द पारा द खुशालाई खबर उस बाद हर इतवार पर रोज बांधी सहर द अतो बजो नवाखली माजिगर चरसलोर बजो पोरे द इस्लामाबाद और द पेखवर नुमावड़े डॉक्टर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन डॉक्टर तारिक रहीम सेब MBBS MCPS FCPS एक्स रजिस्ट्रार HMC पिशावर सहर द अतो बजो नवाखला माजिगर तरसलोर बजो पूरी तासो तशरीफ रवड़े शे नुपा तैयार साथे बिलाल प्लाजा अल सेद CNG टा महामख कोंडा मोड़ जहांगीरा रोड सवाबी। मजीद द मालूमात द पारा या द नंबर अगस्तो द पारा पदे नंबर राबितो के 0314-15-13-232 यानी के 0314-15-13-232।
3: माँ वेले माल द शारजा ने काली रावड़ा
4: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगल आर्शमा
3: ओहो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वैरायटी मौजूद दा
4: नुदा सिवाया कना
3: शारजा ज्वेलर्स Proprietor, Zeb Brothers, phone 0938-273265.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
2: Music and information station 94 FM.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www
1: ना उम्मीद सू बीमारा नो दोपारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की पुरानी सुविधा कतासु।

पाकिस्तान में रहने वाले बहुत ही मुअज्ज़िज़ अफगान बहन भाइयों को भी दिल की अदा गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम, हाय हाउ आर यू। सैलाब हमदर्द बारौल डीसी फैन सेंटर मटा मोगल खेल सुरबुल साहब से आवाज हो रही थी। रोरा सलाम में दरवाखला अब्दुल वहाब सलाम डॉक्टर सेब जमाद रोर सैलाब हमदर्द मासर पाकिस्तान के सिर्फ सिर्फ गुरजी दी और जटिर जात खफाई मनो खफगान हम देखो सैलाब हमदर्द बल्दे तने दे रवान बल्कि खपल कोर था रवान दे खपल वतन था रवान दे और सैलाब जमुन अखलास न दे बल्कि सैलाब हमदर्द जिदन होगा जमुन बलूचिस्तान सॉरी द अफगानिस्तान आगा जमुन जिम्मेवार मलगरे बद खैर से जुड़ी थी। द अफगानिस्तान गुड गुड तो बजमंग बेलाडोना कम प्रोडक्ट सीधा बरासर रसई खैर सर बरियाल साहिल मुले गले रे जान आगा अफगान मुले गले रे जी उमदा मलगिरी बमंग सरा यो यो विलायत और तो मिलेगी क्या यो यो विलायत बरासर जी देना तो बेलाडोना ना डके यो इंशाल्लाह दामी उम्मीद थी सैलाब इंशाल्लाह मुंग दामो करा गई जलालाबाद की इंशाल्लाह खासकर जलालाबाद बाजार की इंशाल्लाह द खैर सर मुंग तजी देना तो हैदर मुमंद अस्पताल युब्रांज बरात द खैर सर उबासी बे बरात हुई थी डॉक्टर से बराजा नो अफगानानो चतुर अस्थी खूब अस्थी बेसियार खूब असमा खूब असम शुमा चतुर अस्थी जी बेसियार खूब अजी खुजा सिंह ने सी खुजा मिंगरी खाने शुमा खुजास माँ खुद फारसीवान सुमो हो रहे हैं मैं फारसी रे में फाहम जी शुमा फारसीवान से फारसीवान सी चरा चमे कुनी चरा चुश्मेगी शमेगी शुमा फारसी जुबान सी के फारसी जुबान सी मरबुगो गुल रहमान मरबुगो शुमा अज उर्मल गुल रहमान मरा मिस कॉल मेजना मबरत गुल रहमान बेगम के तो अफगानी सी के ना अफगानी सी शुमा फारसी में फॉर्मी के ना में फॉर्मी बिसार खो बस शुमा फारसीवान असी के ना फारसीवान सी वेलकम राजी जी सदफ दो कुहाट जमो आवाज हो रही हुई थी वेलकम भाई जमा सलाम और इजम राले मुझे सदफ नु लेट राले गोरो माते बेलडोना एंटी एंटी हेयर फॉल शैम्पू बारे की तुम्हारा खबर उकले ली माते बेलडोना एंटी हेयर फॉल टॉनिक पे बारे की तुम्हारा खबर उकले ली माते बेलडोना हेयर किट पे बारे की तुम्हारा खबर उकले ली और ता गोरो किंग ऑफ केपीके वाना और दोनों गोरो दाखो ना जाए जरा सर करो बरला ये तुम्हारी मर्जी कि आपने सुना या नहीं सुना लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों ने बेलडोना का नहीं छोड़ना है जी बेलडोना जाफरानी क्रीम बेलडोना जाफरानी फेस वॉश सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कीजिए और जीतिए बल्हा शेनामा जी बेलडोना जाफरानी क्रीम बेलडोना जाफरानी फेस वॉश द निजी कॉस्मेटिक जनरल और मेडिकल स्टोर्स ना जमासर जरूर वाखले जी बेलडोना जाफरानी क्रीम पहली ही रात से खूबसूरती की नहीं शुरुआत संगचिदा मुंगदवी ची अक्सर दबाजी वाजी लूखी वो मुकतली वागा अक्सर चिदनो जंगी नहीं होलेगी क्या ना दसी जमंग दस किन चिदनो दाम दाग शान देगी जंग नहीं सी मतलब द नोर पो जबानी द लुगी पो जबानी द दुडू पो जबानी या द माहौल चुकम खतरनाक के मिशुआगानी दा चिदनो दाग शान देगी दा गंदगी नहीं सी उदागी पो जबानी अक्सर चिदनो जमंग दी मख्ता नुकसानात मिलावी बेलडोना जाफरानी क्रीम या बेलडोना जाफरानी फेस वॉश की जाफरान एंटी एक्स एज एंटी ऑक्सीडेंट इस्तेमाल शी कम चिदग सुजनो कम स्किन ता नुकसान और रसई द आगा नुकसान तो द कमोलो द आगा नुकसान तो द खत्मोलो स्किन द सेहतमंद सातलो द ताकतवर सातलो दोबारा दे के इस्तेमाल शुरू दी जाफरान और की एज एंटी ऑक्सीडेंट इस्तेमाल शुरू दी تاسو گورے سر د زعفران نمونه مومونه اور پلان کې د سیو ډینګری د سیو هغه د سیو داغ سن گورے یو خبره یاسا دی تاسو با زعفران نمونه اور دی تاسو با زعفران غفران کامران شیر رحمان گل رحمان خیسر رحمان او مړه بلا نمونه بوري کنه نو تاسو به یوازې زعفرانو په سینې بلکې د زعفرانو په دغه کریمو کې د استعمال نه به هم ځان خبر وي چې آیا په دغه کریمو کې زعفران په څه توګه باندې استعمال شوي څه د پاره استعمال شوي دي بیلډونا زعفراني کریمو کې زعفران ایز اینټي اکسیډنټ استعمال شوي دي
نو که تاسو غواړئ چې واقعي ماته دې زعفران غفران کامران شیر رحمان او داسې کوم نومونه دي نو اگر ماته بهترین طریقې سره دې ماته اوریجنل زعفران ملو شي بیا اوریجنل د زعفرانو کریم دې ماته ملو شي نو هغه صرف او صرف د بیلاډونا نه ملاوېدی شي بل څه نه شي ملاوېدلی جی.

0: है भाई, को जाता है कि
1: जी जी
0: जब किशोर के को
1: जी जी
0: ओ कैम राकुली हो जहन मन औ लड़ा मते कम नगमन गुत तरल ना बदर जी
1: जुड़ा खबर दा

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।